0: भगवे को कितना बदनाम करना चाहते, संतों का कितना अपमान करना चाहते।
1: On the other hand, the opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilt over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Bansuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong. That's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just, in fact, happened a little while back.
2: पूरी मर्यादा में किसी व्यक्ति को कोई गाली तो नहीं दिया, किसी साधु का नाम तो नहीं लिया।
3: ये मामला क्यों दर्ज हो गया?
2: होता रहता। सनातन की रक्षा और इस भारत के 100 करोड़ के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो। सदन में तो हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए? अब गारा मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, गदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
4: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है, जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए। तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से, आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
5: पूरे देश में लोग गुस्से में आक्रोश में है कि भगवान राम की अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही है, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो आलोचना करी तो साधुओं का, मैं कौन साधु का अपमान, कोई साधु के, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है, साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए, आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो, तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
6: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के, पैरों में रख के, जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि FIR दर्ज हुई है और पप्पू यादव तो मुखोटा है। अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते, सरकार ने तो SIT बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
3: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। जो राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
7: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास ना करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
8: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अग्देश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
1: High drama also unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference he was holding, leading to a complete episode of chaos and scuffle between the MP's supporters and aides and the attacker on the other side. The incident, in fact, took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition's skit at Parliament over the same. Now, reacting to the attack, Independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident. And Pappu Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, two accused, in fact, have been identified. While one accused, Sumit, is in police custody, other Happy Sharma spoke exclusively to India Today, claiming that both of them were unarmed, had gone to the MP's residence only to discuss the Chanda Chori skit. And the police, so far from what we are learning, have not initiated an investigation. Sources say no official complaint has been filed by the MP so far, so they are awaiting that very complaint to start the very probe.
9: सब प्रेस के साथ ही थे ही वार्ता हो ही रही थी, उतने में मारने की साहब तू तो चल ही रहा है, कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो, कोई कह रहे हैं मार दो, कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो आवाज ही चली गई। जो लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे।
10: पप्पू जी एक जननेता है, जननेता का मतलब 24 घंटे 24x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं। अरे वो हमलावर था, जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा। अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता, हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते।
11: हम भीतर गए, हमारी चेकिंग होके गई, हम पे कोई कुछ नहीं था, तो हम भीतर गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संते हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई? आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया।

0: क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहां की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
1: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले।
2: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है,
1: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं।
3: थोड़ा सा तो निराशा है कि मैं गोल नहीं जीत पाई। मैंने कोशिश पूरा किया था और मेरा मैच भी ऐसा ही क्या बहुत क्लोज गया, और उससे ज्यादा खुशी है मेरे टीम के लिए। टीम ने बहुत ज्यादा अच्छा किया है, इतने सारे गोल्ड और पूरी टीम का जो एफर्ट, कोचेस और पूरा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारे गवर्नमेंट सब ने इतना सपोर्ट किया है, तो उसके लिए ज्यादा मैं खुश हूँ कि हम इंडिया टीम, जो पहले हम कॉमनवेल्थ गेम्स में एक मेडल लेने के लिए हम इतना होते थे बॉक्सिंग में, लेकिन अभी पूरा टीम 10 का 10 मेडल है, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
4: थोड़ा चूक गए हैं और ये कमी मैं एशियन गेम में पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपना बेस्ट दिया था और इंग्लैंड के और मेरे की फाइट खींची है और थोड़ी चुप रह गई है, ये मैं एशियन गेम में पूरा करूंगा।

0: ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਔਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ।
1: जो लोग जानबूझकर पार्टी को खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए और उनको बताइए कि आप हमारी पार्टी को खराब नहीं कर सकते। हमने किसी का ध्यान नहीं, अपने आप पे नजर रखनी है और अपने वर्कर को मजबूत करना है। आने वाला वक्त हमारा है और सरकार भी हमारी बनेगी।
2: The Ram Mandir Charhawa Chori has triggered a fresh political face-off between the Congress and the BJP. Senior Congress MP Pramod Tiwari has now trained his guns on Prime Minister Narendra Modi over the controversy, with Pramod Tiwari now having made a controversial personal remark questioning who Prime Minister Modi's Sita was when he performed rituals during the Ram Mandir consecration. He also alleged that the temple was inaugurated before the completion for political gains, despite the Supreme Court's verdict that had already cleared the way for its construction. Now, the BJP has also hit back and has labelled Congress as anti-Ram and anti-Sanatan Dharma.
3: मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना, मजबूरी हो गई, बनाना पड़ा। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
4: प्रमोद तिवारी राहुल गांधी के इशारे पर प्रभु राम को लांछित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी संसद के परिसर में जिस तरीके से भगवा पर हमला हुआ है, ये सबने देखा है। तो प्रमोद तिवारी और कांग्रेस ये जान ले कि भगवा पर हमला, प्रभु राम पर हमला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
5: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं।
2: On the other hand, opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilt over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR.

0: against Rahul Gandhi, Pappu Yadav, as well as Avadesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Basuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street police station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong. That's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just, in fact, happened a little while back.
1: Puri maryada mein kisi vyakti ko koi gaali to nahi diya. Kisi sadhu ka naam to nahi liya.
2: Ye mamla kyun darj ho gaya?
1: Hota rehta hai. Sanatan ki raksha aur is Bharat ke 100 crore ke aastha ke liye hum 1 lakh baar qurban ho. जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो सदन में. सदन में हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है. बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए. अब गारा मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, कदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना.
3: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है. जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए. तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं. पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से, आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं.
4: पूरे देश में लोग गुस्से में, आक्रोश में है कि भगवान राम की अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे. तो इससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो, आलोचना करी. तो साधुओं का, मैं कौन साधु का अपमान, कोई साधु कह रहे, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है. साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए. आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो. तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है. तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया, उसी का पैसा निकालने लगे.
5: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के, पैरों में रख के, जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं. उसी का परिणाम है कि एफआईआर दर्ज हुई है. और पप्पू यादव तो मुखोटा है. अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते. सरकार ने तो SIT बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया.
6: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी. चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे. आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के. तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है.
7: कल जिस तरह से
2: पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास ना करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
7: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अग्देश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
0: High drama also unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference he was holding, leading to a complete episode of chaos and scuffle between the MP's supporters and aides and the attacker on the other side. The incident, in fact, took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition's skit at Parliament over the same. Now, reacting to the attack, Independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident. And Pappu Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, two accused, in fact, have been identified. While one accused, Sumit, is in police custody, other Happy Sharma spoke exclusively to India Today, claiming that both of them were unarmed, had gone to the MP's residence only to discuss the Chanda Chori skit. And the police, so far from what we are learning, have not initiated an investigation. Sources say no official complaint has been filed by the MP so far, so they are awaiting that very complaint to start the very probe.
8: सब प्रेस के साथ ही थे, ही वार्ता हो ही रही थी, उतने में मारने की साहब तू तो चल ही रहा है, कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो, कोई कह रहे हैं मार दो, कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो आवाज ही चली गई। जब लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे।
9: पप्पू जी एक जननेता है, जननेता का मतलब 24 घंटे 24x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं। अरे वो हमलावर था, जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा। अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता, हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते।
10: हम भीतर गए, हमारी चेकिंग होके गई, हम पे कोई कुछ नहीं था, तो हम भीतर गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई? आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया।

0: are watching India Today.
1: The faction war within the Punjab Congress is in full view ahead of the 2027 assembly elections. Supporters of former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi raised loud Channi Zindabad slogans, triggering an awkward moment for the state leadership. Senior leader Razia Sultan rebuked the party workers, and Punjab Congress Chief Amarinder Singh Raja Waring stepped in with damage control, urging supporters to refrain from any kind of sloganeering. Channi has struck a conciliatory note as well, saying Congress must function like a bouquet, carry every leader along and avoid alienating their senior leaders. He added that the final decision rests with the party high command and that he would discuss the issue with Waring himself. But Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has seized the opportunity to target the Congress, saying infighting continues unabated. Mocking the party, Mann said, "We sit on chairs, but the Congress throws them." Mann has also accused the Congress of neglecting Punjab and nurturing corruption and drug culture in the state.
2: ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਇਸ ਵਕਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 70,000 ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 500 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 70,000 ਬੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 125,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜੂਬ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ,
3: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ।
4: जो लोग जानबूझकर पार्टी को खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए और उनको बताइए कि आप हमारी पार्टी को खराब नहीं कर सकते। हमने किसी का ध्यान नहीं, अपने आप पे नजर रखनी है और अपने वर्कर को मजबूत करना है। आने वाला वक्त हमारा है और सरकार भी हमारी बनेगी।
1: The Ram Mandir Charhawa Chori has triggered a fresh political face-off between the Congress and the BJP. Senior Congress MP Pramod Tiwari has now trained his guns on Prime Minister Narendra Modi over the controversy, with Pramod Tiwari now having made a controversial personal remark questioning who Prime Minister Modi's Sita was when he performed rituals during the Ram Mandir consecration. He also alleged that the temple was inaugurated before the completion for political gains, despite the Supreme Court's verdict that had already cleared the way for its construction. Now the BJP has also hit back and has labelled Congress as anti-Ram and anti-Sanatan Dharm.
5: मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना, मजबूरी हो गई, बनाना पड़ा। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
6: प्रमोद तिवारी राहुल गांधी के इशारे पर प्रभु राम को लांछित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी संसद के परिसर में जिस तरीके से भगवा पर हमला हुआ है, ये सबने देखा है, तो प्रमोद तिवारी और कांग्रेस ये जान ले कि भगवा पर हमला, प्रभु राम पर हमला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
7: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं।
1: On the other hand, opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilt over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav, as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Bansuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street police station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong, that's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just, in fact, happened a little while back.
8: Puri maryada mein kisi vyakti ko koi gaali to nahi diya. किसी साधु का नाम तो नहीं लिया।
9: ये मामला क्यों दर्ज हो गया?
8: होता रहता है। सनातन की रक्षा और इस भारत के 100 करोड़ के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो। सदन में तो हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है, बाढ़ में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े पहनते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए? अब गरम मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, कदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
10: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है, जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए। तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से, आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
9: पूरे देश में लोग गुस्से में, आक्रोश में है कि भगवान राम की अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो आलोचना करी, तो साधुओं का मैं कौन साधु का मैं, कोई साधु कह, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है, साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए, आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो, तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
11: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के, पैरों में रख के, जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि एफआईआर दर्ज हुई है और पप्पू यादव तो मुखोटा है। अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते, सरकार ने तो एसआईटी बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
12: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
13: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास ना करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
14: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
1: High drama also unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference he was holding, leading to a complete episode of chaos and scuffle between the MP's supporters and aides and the attacker on the other side. The incident, in fact, took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition's skit at Parliament over the same. Now, reacting to the attack, Independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident. And Pappu Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, two accused, in fact, have been identified. While one accused, Sumit, is in police custody, other, Happy Sharma, spoke exclusively to India Today, claiming that both of them were unarmed, had gone to the MP's residence only to discuss the Chanda Chori skit, and the police so far, from what we are learning, have not initiated an investigation. Sources say no official complaint has been filed by the MP so far, so they are awaiting that very complaint to start the very probe.
15: सब प्रेस के साथ ही थे ही वार्ता हो ही रही थी उतने में मारने की साहब तो चल ही रहा है कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो कोई कह रहे हैं मार दो कोई कुछ बोल रहे हैं नहीं तो आवाज ही चली गई जो लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे
16: पप्पू जी एक जननेता है जननेता का मतलब 24 घंटे 24x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं अरे वो हमलावर था जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते
17: हम भीतर गए हमारी चेकिंग होके गई हम पे कोई कुछ नहीं था तो हम भीतर गए तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हमने केवल उनसे इतना कहा पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं पर आप हमारे साधु संतों पर जो देश के साधु संत हैं उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं इसका क्या मतलब है भाई आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया।

0: all the Gulf nations to have any kind of consultation with the Iran. Diplomacy will be better, and now that it is what the U.S. President Donald Trump is claiming, that deal is very near, and the Strait of Hormuz will be opened for the navigation. We have seen the impact as earlier by these statements of U.S. President, as you we are flashing that the crude the rates of the crude oil in the world market have trembled after this statement, and it is believed that globally there will be again a fresh diplomacy and negotiations between U.S. and Iran in this escalating tension between Iran and U.S.
1: All right, Ashraf, thank you for those details on the latest update as far as the West Asia war is concerned, where Donald Trump says that Iran talks will be beginning today. Trump has also not set any deadline for the Iran nuclear deal. Trump has said that he prefers a deal, not more deaths. And the U.S.-Iran negotiations will be starting this afternoon. Trump has given no information of the venue of the participants, but he is pushing for a quick deal with Iran. And he has also linked the talks to Hormuz reopening. The Strait of Hormuz remains at the center of the talks between U.S. and Iran. Meanwhile, the oil prices have fallen over 4% as the talks have been announced. So there's a ray of hope and there's relief in sight. And that is why the oil prices have also fallen over 4% as Donald Trump talked about, announced about these talks, which will be held between Iran and the United States. Meanwhile, Iran also holds diplomatic talks with Saudi Arabia and Pakistan. And Trump says that diplomacy is what is preferred over escalation. Some more news coming in. No FIR against a minor in the Prime Minister abuse row. As per Delhi police, no FIR will be filed against the minor. And no FIR now or even later. So it's not that now it is not being filed. It will not be filed at all. The move follows Prime Minister's I Forgive Youth message. Remember, he had posted a video saying that I forgive those who had abused me. And the Prime Minister had said that I forgive children who abused me and that they should be given a chance. And this was a case regarding the viral video of a minor girl during the protests at Jantar Mantar. The Delhi police has not registered an FIR, nor will it register any FIR in this matter. So that's some relief for the minor in this case who had abused and used derogatory remarks against the Prime Minister. After which the Prime Minister had also posted a video on social media saying that these are kids, they must be given a chance, and hence I forgive the youth. And now what we're learning is that the Delhi police will not be filing any case, any FIR against this minor now or even later.
2: मैं उनके बहुत आभारी हूँ, उन्होंने माफी दी हम लोगों को. मैं उस चीज से लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने उनको इतना कुछ बोला और हम लोगों को इतना इन्फ्लुएंस किया गया और उन्हें हमें इतना बड़ा माफी दान दिया है. इस चीज से मैं बहुत आभारी हूँ. किसी ने प्रोटेस्ट के लिए बुलाया नहीं था. मैं वहाँ गई थी शॉपिंग करने के लिए सीपी, और पता लगा बीच में कि सीपी तो बंद है, प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक कुछ हो रहा है. तो अब हम लोगों को हुआ कि वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है प्रोटेस्ट में. तो हम लोग गए, फिर वहाँ बाहर की तरफ ही थे, हम लोग अंदर नहीं गए थे जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था. हम बाहर की तरफ ही थे, अब वहाँ पे बन रखे थे बहुत सारे ग्रुप्स. तो फिर वहाँ पे लोगों से उनकी वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही थी, उनको ऐसे प्रोवोक किया जा रहा था कि आप चीज़ें बोलो, आप चीज़ें बोलो, आप अपनी फ्रीडम लीजिए. तो उस चीज़ पे उनके इन्फ्लुएंस में आके सब ने ये चीज़ें बोली, बहुत चीज़ें बोली सब ने.
3: बच्ची ने गलती की है और वो बहुत अपने बड़ों से ऐसे गालियां नहीं देनी चाहिए थी. उसके लिए मैं पूरे भारत देश से बेटी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ. और ये प्रोटेस्ट में जाएं, बैठें, प्रोटेस्ट अपना एक अलग मुद्दा है बच्चों के लिए कि वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू वो उठा रहे हैं, वो एक अलग है. पर अपने बड़ों को गालियां मत दो मैडम. परिस्थिति ये है कि मुंह ढक के रहना पड़ रहा है, बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर के आसपास गाड़ियां घूम रही हैं, जहां हम पहले रहते थे वो जगह छोड़ चुके हैं, अब जगह जगह बदलते फिर रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, खाने पाने के लिए परेशान है. कोई सरकार की तरफ से हमें कोई प्रोटेस्ट कोई मदद नहीं मिली। इवन बच्ची की अभी तक FIR तक वापस नहीं है, जबकि पता चल चुका है शी इज माइनर। ऐसा क्यों?
2: तो अब क्या सरकार,
3: जबकि मोदी जी ने माफ कर दिया, मेरे कोई संपर्क में नहीं है मैम, ना मुझे संपर्क करना है। हमें इसे प्रोटेक्शन चाहिए, हम छोटे लोग हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें सियासी मसले हम नहीं जानते। पुलिस ने मुझसे प्रोटेक्शन के लिए कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया है।
1: And Prime Minister Modi in his last video chose to forgive the children and urged society to guide those who have been misled. Listen in.
4: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu. Jantar mantar par jo kuch bhi hua desh aur duniya ne dekha hai. Kuch shararti bachchon ne भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का।

0: थोड़ा सा तो निराशा है कि मैं गोल नहीं जीत पाई। मैंने कोशिश पूरा किया था और मेरा मैच भी ऐसा ही क्या बहुत क्लोज गया, और उससे ज़्यादा खुशी है मेरे टीम के लिए। टीम ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, इतने सारे गोल्ड और पूरी टीम का जो एफर्ट, कोचेस और पूरा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारे गवर्नमेंट सब ने इतना सपोर्ट किया है, तो उसके लिए ज़्यादा मैं खुश हूँ कि हम इंडिया टीम, जो पहले हम कॉमनवेल्थ गेम्स में एक मेडल लेने के लिए हम इतना होते थे बॉक्सिंग में, लेकिन अभी पूरा टीम 10 का 10 मेडल है, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
1: थोड़ा चूक गए हैं और ये कमी मैं एशियन गेम में पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपना बेस्ट दिया था और इंग्लैंड के और मेरे की फाइट खींची है और थोड़ी चूक रह गई है, ये मैं एशियन गेम में पूरा करूंगा।

0: क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहां की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
1: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है, मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं।
2: प्लस ऊपर वाला सब देख रहा है। ग्रीन लैम लैमिनेट्स, तारीफें दिखाई देंगी।

0: सीजेपी जो है कांग्रेस जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है, आपका जो भी चंदा और बाकी चीज़ें हैं वो आपको ECI को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है, और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है, इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Indian in fact wrestlers. This verdict followed a previous clean sheet granted in 2025 in the month of May by a Delhi court that accepted a police closure report, completely dropping the separate severe charges under the stringent provisions of the POCSO, which is the Protection of Children from Sexual Offences. Listen in.
1: सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा माननीय बुज्जर साहब ने कि ब्रजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है, बाइज्जत शब्द। मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है।
2: पर लगातार एक
1: मेरी पहली बात सही हुई, मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी
3: आइए, तोमर साहब।
1: और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं, आज सब लोग आए हैं पहली बार, ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मैंने, मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब बाकी आज प्रसन्नता का विषय है।
0: Okay, so we are going to go straight across to my colleague Anshul for more details on that stories we heard there from Anshul, the former BJP MP, Brijbhushan Sharan Singh. There he says, I stand vindicated. Talk to us about the kind of arguments that went on in court that eventually has decided that the charges against him don't stand, because it's a huge setback for a battle that women wrestlers had been waging, isn't it, Anshul?
4: Well, definitely. This is a huge setback for the wrestlers who were raising all these accusations as to how Brijbhushan Sharan Singh, who was at the helm of things back in 2024 when this entire incident had come to the fore, and how he was abusing his powers. All these allegations were put forth. Remember, initially, a POCSO complaint was also given against him, which was eventually withdrawn from the side of the victim itself. And now this case itself, in which senior wrestlers had given this complaint that how Brijbhushan Sharan Singh actually tried to outrage their modesty, and even charges of stalking were placed against him as well. Now, in the arguments that have happened over the last at least 2 years inside the Rao Venue court, the side of Brijbhushan Sharan Singh continuously maintained that there are discrepancies that have come to the fore in the statements that have been given from the side of the victims and the complaint that has been registered by them. And this became one of the most focal points of this entire arguments that there were
1: several. कहा था कि ये एक साजिश है, खड़ियंत्र है, और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा। और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है।
2: सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे में सर वो कितना वक्त, किस तरह का वक्त आपके लेता
1: हूं? मैं
5: कैमरा कहां जाएगा, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई।
1: 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूँ, और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था, और मुझे
5: भाई से
1: अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूँ कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था, और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा, और मेरे साथ न्याय हुआ, और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। और मैंने एक शेर उस दिन पढ़ा था कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, सिंगार नहीं था। हम जो जूनियर खिलाड़ी थे, जिनका हक मारा जा रहा था,

0: A top story at this hour. Delhi court has acquitted Brij Bhushan Sharan Singh. Son Karan Bhushan welcomed the acquittal. Karan Bhushan has said truth has prevailed. Brij Bhushan claims vindication as well. Brij Bhushan Sharan Singh, a former BJP MP who denied a ticket in the last elections, was the former Restless Federation chief, says, "What I have always claimed is true. Protests against me were politically motivated. Aap Congress conspired with athletes. It's a big relief here for the former BJP MP and ex-wrestling body chief. After POXO case closure, it's fresh relief for him. The court has found no merit in harassment case. Prominent wrestlers accused Brij Bhushan of harassment.
1: आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? Brij Bhushan Sharan Singh जो है वो बाइज्जत बरी हो गए, क्या कहेंगे आप?
2: देखिए, हम लोग के लिए बहुत खुशी का पल है और मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ, इस खुशी में मुझे हिस्सा लेने दीजिए। बहुत सारे पटाखे फोड़ने, 3 साल का संकट बड़ी मुश्किल से काट के आए हैं भैया। आप इजाजत,
1: जंतर मंतर पर जो लोग गए थे उनका आप क्या कहेंगे? उनमें से एक
2: जंतर मंतर में सारे गए थे जो विपक्ष यहाँ पे नाटक कर रहे हैं खड़े होके, मंदिर चंदा चोरी फलाना ये वो, ये सारी नौटंकियां इन लोग को आती है और यही नौटंकी वहां फैलाने गए थे। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इस टाइम जेंजी के साथ खड़े हो गए कि सोचे वो मुद्दा कैश कर लेंगे, उस टाइम बेटियों के साथ खड़े हो गए कि मुद्दा कैश कर लेंगे। तो ये इनका नाटक, इनके नाटक से दूर रहिए।
1: उनमें से एक ने चुनाव भी लड़ा, चुनाव भी लड़ा उनमें से एक,
2: वो उनकी किस्मत वो चाहती थी चंदा।
1: अच्छा किरण भाई, एक बार बताइए, आपकी बात हुई पिताजी से, क्या उनके मन में क्या भाव है और आपके मन में क्या भाव है आज के दिन?
2: भैया, हम सब सनातनी हैं और कष्ट झेलना और संकट हम लोग ने बहुत देखे हैं और एक कष्ट झेल के हम लोग बाहर निकले।
0: Right, so you heard that from Karan Bhushan, who is now a sitting MP. Remember, he was given a ticket by the BJP in lieu of his father, Brij Bhushan Sharan Singh, who says that this case was clearly politically motivated. Everybody tried to score political brownie points to piggyback on wrestlers. There are allegations that found support within sections of the opposition and that this is a case which was in fact, a political conspiracy. That's what Brij Bhushan Sharan Singh has said. Son Karan Bhushan, a sitting MP, has welcomed these developments, saying that today is the time to celebrate. We knew these were false charges and that it was a political conspiracy.

सीजेपी जो है कांग्रेस जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है, आपका जो भी चंदा और बाकी चीज़ें हैं वो आपको ECI को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है, और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है, इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है।

सुबह से चार फोन धमकी मिल गई कि आज मार देंगे तुमको। आज मैं बिशुंदु परिषद से बोल रहा हूं, मैं बजरंग दल से बोल रहा हूं, तुम निकलोगे तुम्हें मार देंगे। माफी मांगो। मुझको समझ में नहीं आता किस बात को लेके माफी मांगे। चोरी आप कर रहे हो, आम आदमी की आस्था के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हो, भगवान के साथ गद्दारी आप कर रहे हो।

0: जंतर मंतर में इतने रेसलर्स रेणुका जी, जंतर मंतर में इतने रेसलर्स ने प्रोटेस्ट किया, अभी राहुल अपने कोर्ट से आया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया।
1: क्यों नहीं, सबको करेंगे, सब चोर जितने लोग पार्टी में दाखिल हुए दूसरे पार्टीज में, अरे यही तो प्रधानमंत्री थे, तो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोले थे, अब लाके उसको मुकुट चढ़ा के बिठा दिए। बहुत अच्छी बात है, सारा देश गवाह है कि ये क्या है और इनकी सोच विचार।
0: देश के स्पोर्ट्स स्टार्स है इस तरीके से,
1: उनके तो बेइज्जती कर ही दिए, उन महिलाओं से माफी मांगे कान पकड़े।
2: Look, I don't want to comment on court judgments. I'm sure there'll be a process. I suspect there will be an appeal or whatever. I mean, the important thing is the process of justice should be allowed to function. In any case, whatever the cases may be, I think that accusations are made.
3: You are watching India Today.

0: सीजेपी जो है कांग्रेस जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है, आपका जो भी चंदा और बाकी चीज़ें हैं वो आपको ECI को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है, और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है, इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
2: You are watching India Today.

0: whenever there is a chief minister from one particular community, the MLAs of the same community will not get much of exposure or much of cabinet berth because the chief minister is from that particular community. And it has happened even when Siddaramaiah was a chief minister. At that point of time, OBC got less importance. Now they have given more importance for Lingayat, OBC and minority and backward class community. And if you notice that the Brahmin MLAs have not got a cabinet berth this time. They have been left out. And Veerashaiva Lingayat also got a cabinet berth. But there is only one lady who got the cabinet berth. And what we also get to learn through our sources is that her cabinet berth, her name has been put on hold because there were a lot of discussion because she has not even taken oath as an MLC. It comes as an MLC category. And she's a first-time MLC and she has not even taken oath. Her name has been listed. But her name has been included in the cabinet minister's list. So there are a lot of infighting within the Congress stating that we have contributed for so many years, but you have given to Gayatri Shantegowda in the cabinet
1: Keep tracking the latest on that because heightened activity there from where Sagar is reporting. I want to also help you understand why this would be as much about different equations politically, socially, that D.K. Shivkumar will have to consider. So about 20 names have been announced. The list is out. It has led to joy for some, rebellion for others. Only one woman, interestingly, has been inducted into the 34-member cabinet. They could only find one woman, Emily, to be able to be made part of the cabinet. But also Muslim representation has found up. There were two earlier. Three members have now been added into the cabinet. We'll see exactly what portfolios do the members get. But also apart from that, no Brahmin representation in the cabinet. Could this lead to any sort of an objection, opposition that the BJP could come in with? Zabir Ahmed, who's been a senior leader of the Karnataka Congress, returns now in the cabinet. But this despite allegations that had come in. Remember during the Davangere by-election that had happened, Zabir Ahmed's name had cropped up about how the process was running. But that's not it. Another leader who's set to become a minister also had a share of allegations, and that was the Valmiki Corporation scam that had come in, that the Valmiki Corporation funding or the resources that were supposed to go to the distressed community group was instead being taken over and away by the officials. Embezzlement of funds was the allegation. So two leaders, slightly controversial, have made back into the cabinet.
2: अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए. आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं. किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए. अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े. ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है. बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है. जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए. और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो. एकमात्र यही उद्देश्य है. हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है. एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो. बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए. अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है. तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए. बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए. बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो. कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर परिवार समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े. इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं. और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है. अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो. ये सीधा सीधा मैसेज है. 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया. वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए

0: थोड़ा सा तो निराशा है कि मैं गोल नहीं जीत पाई। मैंने कोशिश पूरा किया था और मेरा मैच भी ऐसा ही क्या बहुत क्लोज गया, और उससे ज्यादा खुशी है मेरा टीम के लिए। टीम ने बहुत ज्यादा अच्छा किया है, इतने सारे गोल्ड और पूरी टीम का जो एफर्ट, कोचेस और पूरा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारे गवर्नमेंट सबने इतना सपोर्ट किया है, तो उसके लिए ज्यादा मैं खुश हूँ कि हम इंडिया टीम जो पहले हम कॉमनवेल्थ गेम्स में एक मेडल लेने के लिए हम इतना होते थे बॉक्सिंग में, लेकिन अभी पूरा टीम 10 का 10 मेडल है, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
1: थोड़ा चूक गए हैं और ये कमी मैं एशियन गेम में पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपना बेस्ट दिया था और इंग्लैंड के और मेरे की फाइट खींची है और थोड़ी चूक रह गई है, ये मैं एशियन गेम में पूरा करूंगा।

0: थोड़ा सा तो निराशा है कि मैं गोल नहीं जीत पाई। मैंने कोशिश पूरा किया था और मेरा मैच भी ऐसा ही क्या बहुत क्लोज गया, और उससे ज्यादा खुशी है मेरा टीम के लिए। टीम ने बहुत ज्यादा अच्छा किया है, इतने सारे गोल्ड और पूरी टीम का जो एफर्ट, कोचेस और पूरा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारे गवर्नमेंट सबने इतना सपोर्ट किया है, तो उसके लिए ज्यादा मैं खुश हूँ कि हम इंडिया टीम जो पहले हम कॉमनवेल्थ गेम्स में एक मेडल लेने के लिए हम इतना होते थे बॉक्सिंग में, लेकिन अभी पूरा टीम 10 का 10 मेडल है, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
1: थोड़ा चूक गए हैं और ये कमी मैं एशियन गेम में पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपना बेस्ट दिया था और इंग्लैंड के और मेरे की फाइट खींची है और थोड़ी चूक रह गई है, ये मैं एशियन गेम में पूरा करूंगा।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: गोलियां मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए. मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है. और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहां की तो देगी देगी. दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
3: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले. इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है. मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं.
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: talking about their rights, and they said that they don't want to buzz until the government considers their demand and it is fulfilled. They want a complete reform
1: Tejit, if you can try and get us more voices from the ground, because the march is on the 6th. Try and, you know, speak to more people.
0: Of course. Students यहाँ पढ़ने आते हैं, तैयारी करने आते हैं, कैसे उनके अधिकार के जो है आपको
2: पता नहीं, सरकार किस नींद में सोई हुए है, उसे जगाने के लिए हम लोग रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आए हुए हैं। 2400 जिला के छात्र अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं कि TDPL एजेंसी के द्वारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया है उसको अभी लंब रद्द करो। साथ ही साथ अभय तिवारी जो मार्केटिंग मैनेजर है उसके द्वारा जो भी परीक्षा पास किया गया है उसको रद्द करना।
0: लातेहार से एक शख्स आए हुए थे जो तैयारी कर रहे थे, उनका कहना था कि गांव से वो खुद पढ़ने अकेले ऐसे शख्स हैं जो पढ़ने के लिए रांची आए हैं, और अगर नौकरी नहीं मिली पढ़ने के बाद तो आखिर गाँव में कैसे कोई सोचेगा कि उसे पढ़ना चाहिए, तब तो फिर पढ़ना ही छोड़ देंगे, ये कहेंगे कि पढ़ के क्या फायदा हुआ।
2: सच्चाई यही है कि आज लोग हम लोग को भी दोष देते हैं कि आपने पढ़ने गया, देखो फलना का बेटा गया पढ़ने के लिए रांची गया, कुछ नहीं कर पाया। उदाहरण बन गए हम लोग आज क्यों कि झारखंड में नौकरियां पेपर लीक नहीं होती हैं, नौकरियां बेची जाती है। आज हमारी किस्मत इतनी खराब है कि हम लोगों की नौकरियां बेच के सरकार खराब कर दी है। आज हम लोग देखिए 32-33 साल की उम्र में भी आज हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं।
0: कितना बार एग्जाम दिया आप, प्रतियोगिता परीक्षा कितना बार दे चुके हैं?
3: हम 5 बार 6 बार दे चुके हैं, इंटरव्यू भी दे चुके हैं जेपीएससी का, लेकिन सब पेपर लीक, इंटरव्यू देने के बाद भी बाहर है। हमारा कहना है कि जांच नहीं चाहिए, पहले जेपीएससी जेएसएससी को रद्द किया जाए, जो भी परीक्षा हुई है सभी परीक्षा को रद्द करो, उसके बाद जांच करो। हमको जेएसएससी रद्द चाहिए, जितनी परीक्षा हुई है जेपीएससी जितनी परीक्षा हुई है पहले रद्द करो फिर जांच करो।
0: आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले?
4: महेंद्र प्रसाद मंडल बरकथा हजारीबाग घर है, और इस बार झारखंड सरकार से हम लोग यार और पार का लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं।
0: क्या चीज का तैयारी करते हैं और कहाँ?
4: हम जेएसएससी सीजीएल का तैयारी करते थे और जेपीएससी का भी तैयारी करते थे, लेकिन हमने
0: कहाँ रह के
4: हजारीबाग में रह करके करेंगे? कहाँ रहेंगे सर?
0: फादर क्या करते हैं?
4: फादर हमारा राजमिस्त्री है, फादर किसान है, और हम बेरोजगार छात्र हैं। हमारा बाप दादा का नौकरी नहीं लगा इस झारखंड में, हमारा भी नहीं लगा, हम चाहते हैं मेरा बाल बच्चा भी नहीं लगे, इसलिए इस बार सिस्टम से लड़ने के लिए यार और पार का लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। कम से कम आने वाला पीढ़ी को नौकरी रोजी रोजगार सही से मिल पाए।
5: झारखंड जो है 26 साल में तरस रहा नियोजन नीति स्थानीय नीति के लिए, हमारे राज्य के साथ 2 राज्य और बना उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, उन राज्यों में नियोजन नीति स्थानीय नीति बन गया। झारखंड जिस मकसद से बना था झारखंडियों को अभी तक में नहीं मिला, इसलिए हम सभी छात्र और पार लड़ाई लड़ने के लिए इस बार तैयार हैं।
0: प्रीतित, यू कैन सी दे आर ऑल सेट फॉर अ लॉन्ग एजिटेशन एंड फॉर अ ओपन शो डाउन विद द हेमंत गवर्नमेंट इफ देयर डिमांड्स आर नॉट कंसीडर्ड, इफ द स्टेप्स आर नॉट टेकन एंड इनिशिएटिव आर नॉट टेकन फॉर अ कंप्लीट रिफॉर्म इन जेपीएससी एंड जेएसएससी एंड until they are not going to sleep, they said, until they are able to wake up the government PT.
1: Satyajit, thank you for joining us from the protest site. My colleague Satyajit, who has been reporting through the course of the day at the protest site in Ranchi, we are going to keep a keen eye on all developments coming in from there. With that, viewers, I'm going to head into a quick break. On the other side is my colleague Gaurav Savant.

0: देश की सरकार के खिलाफ देश की राजधानी की सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहां नागपुर में जाकर करेंगे? ये क्या बदतमीजी है आरएसएस की? संघ वालों को कहो थोड़े दिन चुप रहे, उसी में उनका फायदा है।
1: राम उनको भी सद्बुद्धि दे, इनको आरएसएस को, वो भी जो कहते हैं कोई सच नहीं कहते, वो हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं।
2: और 2024 में
3: एंड इट इजंट जस्ट द कांग्रेस, several opposition leaders have now turned their guns on the BJP's ideological parent.
4: RSS BJP ka pura itihas deshdroh ka hai. Inhone Jinnah ke sath teen rajyon mein sarkare chalai, inhone 52 saal tak tiranga jhanda nahi phehraya, inhone rashtragan ka virodh kiya. To sabse bade deshdrohi to आरएसएस बीजेपी के लोग हैं।
5: आरएसएस फिर तो साफ साफ ये कह रही है कि देश का हर बच्चा जेंजी पूरा जो है वो एंटी नेशनल है। इनसे कोई सर्टिफिकेट चाहता नहीं है। जो भी कोई विरोध की आवाज उठती है उसको एंटी नेशनल बताने का जो करार करते हैं, तो ये अब दुनिया समझ गई है, देश समझ गया है हमारा।
3: बट द आरएसएस अपीयर्स टू बी लुकिंग बियॉन्ड द पॉलिटिकल स्लगफेस्ट। इट्स नेक्स्ट मूव इज एम्ड डायरेक्टली एट द कंट्रीज यंगेस्ट वोटर्स। RSS Chief Mohan Bhagwat is set to pitch the Indian Way to Gen Z and Gen Alpha in Mumbai on August 6th, in what is being seen as a major youth outreach. Mohan Bhagwat is expected to interact with nearly 2,000 teenagers, weeks after the July 28th protests brought young voices to the center of the political conversation. Remember, the same RSS chief had called today's youth as imitative and emotional, and had expressed concern about the growing influence of social media and peer pressure on their thinking and decision making.
6: Gen Z achhi rehti hai, wo anukaranshil rehti hai, emotional rehti hai, bahut thande dimag se vichar nahi karti hai, aur jo unke sampark mein hai wo agar dikhne mein pramanik ho to unko appeal karta hai.
3: And that's what makes this confrontation bigger than a single protest or one political party. Was the CJP-led protest a genuine grassroots movement, or was there something more behind it? It's a question that will be asked time and again as the probe in the July 20th crackdown continues. Because the real battle is for control of the narrative in the minds of the youth. Bureau Report, India Today.
7: The RSS says आप क्रोनोलॉजी समझिए एंड द क्वेश्चंस वी विल पुट टू आवर गेसेस, क्या है वो क्रोनोलॉजी समझाइए. बट बियॉन्ड दैट देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग इन झारखंड. दे गैदर्ड एट रांची जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम एंड दे गैदर्ड ऑन द 29th ऑफ जुलाई. दे रेज स्लोगन्स, दे वेव द नेशनल फ्लैग, दे डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट. द प्रोटेस्ट इज नाउ इन इट्स सिक्स्थ डे एंड देर आर पैरेलल्स दैट आर बीइंग ड्रोन विद द दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट एंड देर आर क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड. व्हाई आर द सेम ऑपोजिशन वॉइसेस एंड द कॉकरोच जनता पार्टी रादर ल्यूकवार्म टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स? व्हाई इज द कॉकरोच जनता पार्टी फॉर एग्जाम्पल नॉट स्पियर हेडिंग दिस मूवमेंट जस्ट बिकॉज इट्स इन झारखंड एंड ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट अनलाइक दिल्ली? The CJP has extended support. They've made social media posts. They've supported this movement online. But should they have been on ground the way they were in Delhi? And is there merit in the criticism that a students' movement was actually hijacked by opposition parties? Our Jharkhand Bureau gets us more.
8: Delhi's student uprising has found its echo in Ranchi. After Jantar Mantar, the battle over jobs, paper leagues and recruitment has now reached Jharkhand. Jaipal Singh Munda Stadium has turned into the epicenter of a growing youth movement. Tricolors flutter and students have launched an indefinite satyagraha, alleging deep-rooted corruption in Jharkhand's recruitment system. The students are protesting over alleged paper leaks in State Public Service Commission and Staff Selection Commission exams, evaluation errors and OMR discrepancies, years of delayed recruitment examinations, irregularities in the recruitment process, repeated exam delays, and rising unemployment.
9: माननीय मुख्यमंत्री जी, आप झारखंड के नौजवानों को नौकरी बेचना बंद कीजिए और जितने भी आपके कार्यकाल में परीक्षाएं हुए हैं जेपीएससी और जेएसएससी में, वो सबका सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच कराइए ताकि झारखंड के नौजवानों को न्याय मिल सके.
10: सरकार जब तक हमारी जो मुद्दे हैं, जो मांग है, जब तक वो मानती नहीं है, तब तक हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे. पूरी तरह से

0: मानती नहीं है, तब तक हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे
1: पूरी तरह से। जेएसएससी जेपीएससी और सारे झारखंड के एग्जाम में रिफॉर्म चाहते हैं, बिना गड़बड़ी के एकदम निष्पक्ष एग्जाम हो, यही चाहते हैं।
2: कोई भी सरकार को जगाना है तो नींद नहीं आती हम लोग।
3: द फेस ऑफ द मूवमेंट इज देवेंद्रनाथ महतो। Mirroring Sonam Wangchuk's hunger strike during the Jantar Mantar agitation, Mato has now begun an indefinite fast, vowing to continue until the students' demands are heard.
4: अच्छा, कुछ अरेस्ट भी हुए, फ्रेश अरेस्ट, वो सब जो कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं? आज भी कुछ अरेस्टिंग हुआ?
5: ये सब लिफाफोती है, ऐसा बहुत बार हुआ है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होता है, इस्तीफा देते हैं, लेकिन अचानक एडमिट कार्ड जारी करके एग्जाम ले लिया जाता है और सीट को बेचने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे।
3: Their demands are clear. CBI and ED probe into recruitment scams, cancelled tainted exams and results, fresh, fair and transparent examinations, time-bound recruitment calendar, action against paper leak culprits, leak-proof exam and recruitment system, transparent JPSC and JSSC recruitment. The parallels with Delhi are impossible to miss. Protesters say the Jantar Mantar movement inspired them to launch this fight. They claim the Hemant Soren government has yet to engage with them. The agitation has now acquired a political edge. Cockroach Janata Party founder Abhijit Deepke spoke to the protesters and extended support to their movement.
6: आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है।
3: The BJP, meanwhile, has stepped up its attack.
7: हमारा ये मानना है कि अविलंब सीबीआई जांच करा करके जेपीएससी जेएसएससी के तमाम मामलों पर जो छात्रों का मुख्य डिमांड है उसको पूरा किया जाए, और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया इन लोगों ने एक नैतिक जिम्मेवारी तय करते हुए, वैसे ही इन सारी गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेवारी करते हुए हेमंत सोरेन जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
3: The spark that ignited Jantar Mantar has now reached Ranchi, and with the movement gathering momentum and politics escalating, the pressure on the Hemant Soren government is only mounting. With Satyajit Kumar, Bureau Report, India Today.
8: So is this like a government versus opposition, left versus right debate? We'll focus on the statements of Atul Limaye, the Sahasa Kareva, or the Joint General Secretary of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, citing Dr. Bhimrao Ambedkar's grammar of anarchy, referring to Delhi protests. Is there merit in the criticism that students' protest was actually hijacked by the left ecosystem and political parties, and that anti-national and anti-Hindu slogans and conversations were injected in this protest? Joining me on India First is Ratan Sharda, author, Conflict Resolution, the RSS Way. Though I may add here that this conversation may lead to another conflict, but that's a conversation that we will have with Ratan Sharda. Saira Shah Haleem is an author and a left leader. Vikram Singh is a security expert and former DGP of UP. Nikhil Jain is a political analyst and advocate. Before I come to our guests, for a moment, I also want you to listen in to actor Bhumi Pednekar. She's also weighed in on the protest. She's condemned not just the abusive language that was used by students and the online hate. In a video that she shared on social media, Bhumi Pednekar highlighted that people have every right to voice their concerns over very serious issues like education and the alleged paper leak. However, she also underscored that dissent should remain respectful and should not turn abusive. She appealed to the younger generation to uphold the values of a civil discourse, adding that the country can move forward only through unity. Listen in.
9: क्या हम हमारे देश के, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करेंगे? क्या हम गाली गलौज कर पाएंगे? Guys, this is not a culture. This is wrong. And ये बात तो मुझे बहुत खटक रही थी. That's why I wanted to come out and kind of address this. कि एक देश की प्रगति तभी होगी, तभी आगे बढ़ेगा, जब कलेक्टिवली एकता के साथ, यूनिटी के साथ हम जो फ्लॉज है उनके बारे में भी बात करें और जो अच्छी चीज है उनके बारे में भी बात करें, और हमारा बैकबोन, हमारा कल्चर है, हमारा वैल्यू सिस्टम है, उससे दूर हमें नहीं जाना चाहिए, वरना हम जो सही बात

0: Welcome back to our other special report. After the Jantar Mantar agitation over paper leaks and exam reforms, hundreds of students have now hit the streets in Ranchi in Jharkhand, alleging corruption in recruitment exams, demanding sweeping reforms. The protest has now taken a political turn, with the BJP targeting the Hemant Soren government, the Congress and the Cockroach Janata Party, extending support to the agitators. Take a look at how Jharkhand's youth are now protesting. Get Real India.
1: Delhi's student uprising has found its echo in Ranchi. After Jantar Mantar, the battle over jobs, paper leaks and recruitment has now reached Jharkhand. Jaipal Singh Munda Stadium has turned into the epicenter of a growing youth movement. Tricolors flutter and students have launched an indefinite satyagraha, alleging deep-rooted corruption in Jharkhand's recruitment system. The students are protesting over alleged paper leaks in State Public Service Commission and Staff Selection Commission exams, evaluation errors and OMR discrepancies, years of delayed recruitment examinations, irregularities in the recruitment process, repeated exam delays and rising unemployment.
2: Maniye Mukhyamantri ji, aap Jharkhand ke naujawanon ko naukri bechna band kijiye. और जितने भी आपके कार्यकाल में परीक्षाएं हुए हैं जेपीएससी और जेएसएससी में, वो सबका सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच कराइए, ताकि झारखंड के नौजवानों को न्याय मिल सके।
3: सरकार जब तक हमारी जो मुद्दे हैं, जो मांग है, जब तक वो मानती नहीं है, तब तक हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे।
4: पूरी तरह से जेएसएससी जेपीएससी और सारे झारखंड के एग्जाम में रिफॉर्म चाहते हैं, बिना गड़बड़ी के एकदम निष्पक्ष एग्जाम हो, यही चाहते हैं।
5: कोई भी सरकार को जगाना है तो नींद नहीं आती हम लोग।
1: द फेस ऑफ द मूवमेंट इज देवेंद्रनाथ मातो, मिररिंग सोनम वांगचुक्स हंगर स्ट्राइक ड्यूरिंग द जंतर मंतर एजिटेशन. Mato has now begun an indefinite fast, vowing to continue until the students' demands are heard.
6: अच्छा, कुछ अरेस्ट भी हुए, फ्रेश अरेस्ट हुए, सब वो सब जो कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं? आज भी कुछ अरेस्ट नहीं हुआ?
7: ये सब लिफाफोती है, ऐसा बहुत बार हुआ है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होता है, इस्तीफा देते हैं, लेकिन अचानक एडमिट कार्ड जारी करके एग्जाम ले लिया जाता है और सीट को बेचने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे।
1: Their demands are clear. CBI and ED probe into recruitment scams, cancel tainted exams and results, fresh, fair and transparent examinations, time-bound recruitment calendar, action against paper leak culprits, leak-proof exam and recruitment system, transparent JBSC and JSSC recruitment. The parallels with Delhi are impossible to miss. Protesters say the Jantar Mantar movement inspired them to launch this fight. They claim the Hemant Soren government has yet to engage with them. The agitation has now acquired a political edge. Cockroach Janata Party founder Abhijit Deepke spoke to the protesters and extended support to their movement.
8: आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है।
1: द बीजेपी मीनवाइल हैज स्टेप्ड अप इट्स अटैक।
9: हमारा ये मानना है कि अविलंब सीबीआई जांच करा करके जेपीएससी जेएसएससी के तमाम मामलों पर जो छात्रों का मुख्य डिमांड है उसको पूरा किया जाए, और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया इन लोगों ने एक नैतिक जिम्मेवारी तय करते हुए, वैसे ही इन सारी गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेवारी करते हुए हेमंत सोरेन जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
1: द स्पार्क दैट इग्नाइटेड जंतर मंतर हैज नाउ रीच्ड रांची एंड विद द मूवमेंट गैदरिंग मोमेंटम एंड पॉलिटिक्स एस्केलेटिंग, द प्रेशर ऑन द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट इज ओनली माउंटिंग। विद सत्यजीत कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे।
0: And we'll keep tracking that story from Jharkhand. Let's turn to some good news today as we end the show. It's a traditional fitness tool, especially across North India, that's making a comeback. Former wrestler Hawa Singh Rana has launched a campaign to take the age-old Mugdar into every home, distributing over 4,000 of them free to children. His mission is simple: get youngsters off their mobile screens and get them fit and well. Take a look at the latest fitness trick, the Mugdar. Take a look.

0: Mukhtar, a traditional fitness club, is getting a new lease of life. Thanks to Hawa Singh Rana. The former wrestler Khera Kala in Delhi has launched what he calls Har Ghar Mukhtar, Ghar Ghar Mukhtar campaign to popularize its use. Rana has distributed over 4,000 mukhtars free to children.
1: 2 साल के एक साल का भी बच्चा है वो भी फोन के अंदर घुस रहा है तो ऐसा क्यों इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों के हाथ में फोन मत दो इसलिए हमने ये मुहिम चलाई है कि बच्चों के हाथ में अब मोबाइल नहीं हम मुकद्दर देंगे
0: The initiative to popularize Mukhtar is funded by Rana and his friends.
1: घर के अंदर अगर जो मुकद्दर है किसी टाइम भी आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक मुकद्दर की एक्सरसाइज कर दोगे तो आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी रही जिम की बात जिम खराब चीज नहीं है हम ऐसे नहीं कहते कि जिम खराब है नहीं लेकिन जिम के अंदर भी कोशिश करें कि देसी एक्सरसाइज जरूर जोड़ें और मुकद्दर तो जरूर जोड़ें जिम के अंदर भी
0: Rana explains easy availability of Mukhtar means it can be used at homes by women as well.
2: मैं अपने बच्चों को यहाँ शाम को 5 से 7 बजे तक 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए यहाँ लाते हैं और उससे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और मोबाइल जो ये 6-6 घंटे 4-4 घंटे स्कूल से आने के बाद देखते थे वो ना के बराबर हो चुका है
3: हमने दिल्ली देहात के सरकारी स्कूलों में भी ये मुहिम और वहाँ से बहुत अच्छी मुहिम चल रही है बच्चे जागरूक हो रहे हैं
4: स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज है जिससे शरीर मजबूत होता है दिमाग शांत होता है बच्चा अपनी सेहत की तरफ ध्यान देता है अच्छा खाना खाता है और आजकल तो स्पोर्ट्स में कैरियर भी बच्चों का बन रहा है तो इससे अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा बचपन से ही अगर जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे तो अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा
0: करंटली अराउंड 150 चिल्ड्रन ट्रेन अंडर राणा'स गाइडेंस विद सुशांत मेहरा ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे
5: Okay, you should try the Mukhtar every morning. Swing it around like this 10 times, one way, 10 times the other. Trust me, and I'm trying it at the moment. It'll make you fit. Think about it. Traditional Indian Mukhtar, a mace of sorts. On that happy note, let me say good night, goodbye. Our thoughts, I can tell you, are with the people of Kerala and of Assam and several parts of the country where there are floods. Thank you so much for joining me. Do say a prayer for the people of those states. Good night, goodbye. Jai Hind, Shubh Ratri, Jai Hind, Namaskar.
6: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?

0: youth to conduct an in-depth case study of the recent CJP movement. Atul Limay has described the protest as anti-constitutional and anti-national. He suggested that while the initial student anger over the NEET paper leak may have been spontaneous, the CJP-led protest was allegedly orchestrated with a larger political objective.
1: म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बीजेपी या अँगलनी हे बघू नका. हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने बघा. अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे.
0: The CJP founder Abhijit Dibke has hit back. He has said that RSS has no authority to label anyone anti-national. He has also invoked one of the most contentious chapters in the organization's history, the assassination of Mahatma Gandhi.
2: जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी उस विचारधारा के लोग हमें anti-national कह रहे हैं. मुझे लगता है उनको कोई अधिकार नहीं है, कोई moral right नहीं है. जो गांधी के हत्यारे हैं उनको कोई मॉरल राइट नहीं है किसी और को एंटी नेशनल कहने का. इस देश में सबसे पहला कोई एंटी नेशनल था तो नथुराम गोडसे था.
3: समस्त जितना भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता है,
0: द कांग्रेस टू हैज जॉइंड द अटैक, आस्किंग द संघ टू स्टे आउट ऑफ द इशू एंड टेकिंग द कन्फ्रंटेशन अ स्टेप फर्दर. द पार्टी हैज वॉर्न्ड दैट वंस इट रिटर्न्स टू पावर द आरएसएस विल बी शोन इट्स प्लेस.
4: देश के बच्चे देश की सरकार के खिलाफ देश की राजधानी की सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहां नागपुर में जाकर करेंगे. ये क्या बदतमीजी है आरएसएस की. संघ वालों को कहो थोड़े दिन चुप रहे, उसी में उनका फायदा है.
5: राम उनको भी सद्बुद्धि दे, इनको आरएसएस को. वो भी जो कहते हैं कोई सच नहीं कहते, वो हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं.
6: और 2024 में
0: एंड इट इजंट जस्ट द कांग्रेस. Several opposition leaders have now turned their guns on the BJP's ideological parent.
7: RSS BJP ka pura itihas deshdroh ka hai. Inhone Jinnah ke saath teen rajyon mein sarkare chalai. Inhone 52 saal tak tiranga jhanda nahi phehraya. Inhone rashtragan ka virodh kiya. To sabse bade deshdrohi to RSS BJP के लोग हैं.
8: RSS फिर तो साफ साफ ये कह रही है कि देश का हर बच्चा जेन जी पूरा जो है वो एंटी नेशनल है. इनसे कोई सर्टिफिकेट चाहता नहीं है. जो भी कोई विरोध की आवाज उठती है उसको एंटी नेशनल बताने का जो करार करते हैं, तो ये अब दुनिया समझ गई है, देश समझ गया है हमारा.
0: But the RSS appears to be looking beyond the political slugfest. Its next move is aimed directly at the country's youngest voters. RSS Chief Mohan Bhagwat is set to pitch the Indian Way to Gen Z and Gen Alpha in Mumbai on August 6th, in what is being seen as a major youth outreach. Mohan Bhagwat is expected to interact with nearly 2,000 teenagers, weeks after the July 28th protests brought young voices to the centre of the political conversation. Remember, the same RSS chief had called today's youth as imitative and emotional, and had expressed concern about the growing influence of social media and peer pressure on their thinking and decision making.
9: Gen Z achhi rehti hai, wo anukaranshil rehti hai, emotional rehti hai, bahut thande dimag se vichar nahi karti hai, aur jo unke sampark mein hai wo agar dikhne mein pramanik ho to unko appeal karta hai.
0: And that's what makes this confrontation bigger than a single protest or one political party. Was the CJP-led protest a genuine grassroots movement, or was there something more behind it? It's a question that will be asked time and again as the probe in the July 20th crackdown continues. Because the real battle is for control of the narrative in the minds of the youth. Bureau Report, India Today.
10: Amid uproar over PM abuse row, actor Bhumi Pednekar is facing backlash after she condemned crass comments against PM Modi. She had urged the youth to express their anger without abuses. The netizens are criticizing Bhumi Pednekar and asking her to speak about police brutality as well. Take a look at this report.
11: when a debate crosses the

0: Welcome back to our other special report. After the Jantar Mantar agitation over paper leaks and exam reforms, hundreds of students have now hit the streets in Ranchi in Jharkhand, alleging corruption in recruitment exams, demanding sweeping reforms. The protest has now taken a political turn, with the BJP targeting the Hemant Soren government, the Congress and the Cockroach Janata Party, extending support to the agitators. Take a look at how Jharkhand's youth are now protesting. Get Real India.
1: Delhi's student uprising has found its echo in Ranchi. After Jantar Mantar, the battle over jobs, paper leaks and recruitment has now reached Jharkhand. Jaipal Singh Munda Stadium has turned into the epicenter of a growing youth movement. Tricolors flutter and students have launched an indefinite satyagraha, alleging deep-rooted corruption in Jharkhand's recruitment system. The students are protesting over alleged paper leaks in State Public Service Commission and Staff Selection Commission exams, evaluation errors and OMR discrepancies, years of delayed recruitment examinations, irregularities in the recruitment process, repeated exam delays and rising unemployment.
2: Maniye Mukhyamantri ji, aap Jharkhand ke naujawanon ko naukri bechna band kijiye. और जितने भी आपके कार्यकाल में परीक्षाएं हुए हैं जेपीएससी और जेएसएससी में, वो सबका सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच कराइए, ताकि झारखंड के नौजवानों को न्याय मिल सके।
3: सरकार जब तक हमारी जो मुद्दे हैं, जो मांग है, जब तक वो मानती नहीं है, तब तक हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे।
4: पूरी तरह से जेएसएससी जेपीएससी और सारे झारखंड के एग्जाम में रिफॉर्म चाहते हैं, बिना गड़बड़ी के एकदम निष्पक्ष एग्जाम हो, यही चाहते हैं।
5: सोई हुई सरकार को जगाना है तो नींद नहीं आती हम लोग।
1: द फेस ऑफ द मूवमेंट इज देवेंद्रनाथ मातो, मिररिंग सोनम वांगचुक्स हंगर स्ट्राइक ड्यूरिंग द जंतर मंतर एजिटेशन. Mato has now begun an indefinite fast, vowing to continue until the students' demands are heard.
6: अच्छा, कुछ अरेस्ट भी हुए, फ्रेश अरेस्ट हुए, सब वो सब जो कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं? आज भी कुछ अरेस्ट नहीं हुआ?
7: ये सब लिपापोती है, ऐसा बहुत बार हुआ है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होता है, इस्तीफा देते हैं, लेकिन अचानक एडमिट कार्ड जारी करके एग्जाम ले लिया जाता है और सीट को बेचने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे।
1: Their demands are clear. CBI and ED probe into recruitment scams, cancel tainted exams and results, fresh, fair and transparent examinations, time-bound recruitment calendar, action against paper leak culprits, leak-proof exam and recruitment system, transparent JBSC and JSSC recruitment. The parallels with Delhi are impossible to miss. Protesters say the Jantar Mantar movement inspired them to launch this fight. They claim the Hemant Soren government has yet to engage with them. The agitation has now acquired a political edge. Cockroach Janata Party founder Abhijit Deepke spoke to the protesters and extended support to their movement.
8: आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है।
1: द बीजेपी मीनवाइल हैज स्टेप्ड अप इट्स अटैक।
9: हमारा ये मानना है कि अविलंब सीबीआई जांच करा करके जेपीएससी जेएसएससी के तमाम मामलों पर जो छात्रों का मुख्य डिमांड है उसको पूरा किया जाए, और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया इन लोगों ने एक नैतिक जिम्मेवारी तय करते हुए, वैसे ही इन सारी गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेवारी करते हुए हेमंत सोरेन जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
1: द स्पार्क दैट इग्नाइटेड जंतर मंतर हैज नाउ रीच्ड रांची, एंड विद द मूवमेंट गैदरिंग मोमेंटम एंड पॉलिटिक्स एस्केलेटिंग, द प्रेशर ऑन द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट इज ओनली माउंटिंग। विद सत्यजीत कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे।
0: And we'll keep tracking that story from Jharkhand. Let's turn to some good news today as we end the show. It's a traditional fitness tool, especially across North India, that's making a comeback. Former wrestler Hawa Singh Rana has launched a campaign to take the age-old Mugdar into every home, distributing over 4,000 of them free to children. His mission is simple: get youngsters off their mobile screens and get them fit and well. Take a look at the latest fitness trick, the Mugdar. Take a look.

0: Mukhtar, a traditional fitness club, is getting a new lease of life. Thanks to Hawa Singh Rana. The former wrestler Khera Kala in Delhi has launched what he calls Har Ghar Mukhtar, Ghar Ghar Mukhtar campaign to popularize its use. Rana has distributed over 4,000 mukhtars free to children.
1: दो साल के एक साल का भी बच्चा है वो भी फोन के अंदर घुस रहा है तो ऐसा क्यों इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों के हाथ में फोन मत दो इसलिए हमने ये मुहिम चलाई है कि बच्चों के हाथ में अब मोबाइल नहीं हम मुकद्दर देंगे
0: The initiative to popularize मुकद्दर is funded by Rana and his friends.
1: घर के अंदर अगर जो मुकद्दर है किसी टाइम भी आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक मुकद्दर की एक्सरसाइज कर दोगे तो आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी रही जिम की बात जिम खराब चीज नहीं है हम ऐसे नहीं कहते कि जिम खराब है नहीं लेकिन जिम के अंदर भी कोशिश करें कि देसी एक्सरसाइज जरूर जोड़ें और मुकद्दर तो जरूर जोड़ें जिम के अंदर भी
0: Rana explains easy availability of mukhtar means it can be used at homes by women as well.
2: मैं अपने बच्चों को यहाँ शाम को 5 से 7 बजे तक 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए यहाँ लाते हैं और उससे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और मोबाइल जो ये 6-6 घंटे 4-4 घंटे स्कूल से आने के बाद देखते थे वो ना के बराबर हो चुका है
3: हमने दिल्ली देहात के सरकारी स्कूलों में भी ये मुहिम और वहाँ से बहुत अच्छी मुहिम चल रही है बच्चे जागरूक हो रहे हैं
4: स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज है जिससे शरीर मजबूत होता है दिमाग शांत होता है बच्चा अपनी सेहत की तरफ ध्यान देता है अच्छा खाना खाता है और आजकल तो स्पोर्ट्स में कैरियर भी बच्चों का बन रहा है तो इससे अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा बचपन से अगर जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे तो अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा
0: करंटली अराउंड 150 चिल्ड्रन ट्रेन अंडर राणा'स गाइडेंस विद सुशांत मेहरा ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे
5: Okay, you should try the mukhtar every morning. Swing it around like this 10 times one way, 10 times the other. Trust me, and I'm trying it at the moment. It'll make you fit. Think about it. Traditional Indian mukhtar, a mace of sorts. On that happy note, let me say good night, goodbye. Our thoughts, I can tell you, are with the people of Kerala and of Assam and several parts of the country where there are floods. Thank you so much for joining me. Do say a prayer for the people of those states. Good night, goodbye. Jai Hind, Shubh Ratri, Jai Hind, Namaskar.
6: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.

0: Welcome back to our other special report. After the Jantar Mantar agitation over paper leaks and exam reforms, hundreds of students have now hit the streets in Ranchi in Jharkhand, alleging corruption in recruitment exams, demanding sweeping reforms. The protest has now taken a political turn, with the BJP targeting the Hemant Soren government, the Congress and the Cockroach Janata Party, extending support to the agitators. Take a look at how Jharkhand's youth are now protesting. Get Real India.
1: Delhi's student uprising has found its echo in Ranchi. After Jantar Mantar, the battle over jobs, paper leaks and recruitment has now reached Jharkhand. Jaipal Singh Munda Stadium has turned into the epicenter of a growing youth movement. Tricolors flutter and students have launched an indefinite satyagraha, alleging deep-rooted corruption in Jharkhand's recruitment system. The students are protesting over alleged paper leaks in State Public Service Commission and Staff Selection Commission exams, evaluation errors and OMR discrepancies, years of delayed recruitment examinations, irregularities in the recruitment process, repeated exam delays and rising unemployment.
2: Maniye Mukhyamantri ji, aap Jharkhand ke naujawanon ko naukri bechna band kijiye. और जितने भी आपके कार्यकाल में परीक्षाएं हुए हैं जेपीएससी और जेएसएससी में, वो सबका सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच कराइए, ताकि झारखंड के नौजवानों को न्याय मिल सके।
3: सरकार जब तक हमारी जो मुद्दे हैं, जो मांग है, जब तक वो मानती नहीं है, तब तक हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे।
4: पूरी तरह से जेएसएससी जेपीएससी और सारे झारखंड के एग्जाम में रिफॉर्म चाहते हैं, बिना गड़बड़ी के एकदम निष्पक्ष एग्जाम हो, यही चाहते हैं।
5: कोई भी सरकार को जगाना है तो नींद नहीं आती हम लोग।
1: द फेस ऑफ द मूवमेंट इज देवेंद्रनाथ महतो, मिररिंग सोनम वांगचुक्स हंगर स्ट्राइक ड्यूरिंग द जंतर मंतर एजिटेशन. Mato has now begun an indefinite fast, vowing to continue until the students' demands are heard.
6: अच्छा, कुछ अरेस्ट भी हुए, फ्रेश अरेस्ट, वो सब जो कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं? आज भी कुछ अरेस्टिंग हुआ?
7: ये सब लिफाफोती है,
6: लिफाफोती
7: ऐसा बहुत बार हुआ है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होता है, इस्तीफा देते हैं, लेकिन अचानक एडमिट कार्ड जारी करके एग्जाम ले लिया जाता है और सीट को बेचने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे।
1: Their demands are clear. CBI and ED probe into recruitment scams. Cancel tainted exams and results. Fresh, fair and transparent examinations. Time-bound recruitment calendar. Action against paper leak culprits. Leak-proof exam and recruitment system. Transparent JPSC and JSSC recruitment. The parallels with Delhi are impossible to miss. Protesters say the Jantar Mantar movement inspired them to launch this fight. They claim the Hemant Soren government has yet to engage with them. The agitation has now acquired a political edge. Cockroach Janata Party founder Abhijit Deepke spoke to the protesters and extended support to their movement.
8: आप लोग students झारखंड में protest कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ हैं। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है।
1: द बीजेपी मीनवाइल हैज स्टेप्ड अप इट्स अटैक।
9: हमारा ये मानना है कि अविलंब सीबीआई जांच करा करके जेपीएससी जेएसएससी के तमाम मामलों पर जो छात्रों का मुख्य डिमांड है उसको पूरा किया जाए, और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया इन लोगों ने एक नैतिक जिम्मेवारी तय करते हुए, वैसे ही इन सारी गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेवारी करते हुए हेमंत सोरेन जी को अपने पद से इस्तीफा देना।
1: द स्पार्क दैट इग्नाइटेड जंतर मंतर हैज नाउ रीच्ड रांची एंड विद द मूवमेंट गैदरिंग मोमेंटम एंड पॉलिटिक्स एस्केलेटिंग, द प्रेशर ऑन द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट इज ओनली माउंटिंग। विद सत्यजीत कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे।
0: And we'll keep tracking that story from Jharkhand. Let's turn to some good news today as we end the show. It's a traditional fitness tool, especially across North India, that's making a comeback. Former wrestler Hawa Singh Rana has launched a campaign to take the age-old Mugdar into every home, distributing over 4,000 of them free to children. His mission is simple: get youngsters off their mobile screens and get them fit and well. Take a look at the latest fitness trick, the Mugdar. Take a look.

0: Mukhtar, a traditional fitness club, is getting a new lease of life. Thanks to Hawa Singh Rana. The former wrestler Khera Kala in Delhi has launched what he calls Har Ghar Mukhtar, Ghar Ghar Mukhtar campaign to popularize its use. Rana has distributed over 4,000 mukhtars free to children.
1: 2 साल के एक साल का भी बच्चा है वो भी फोन के अंदर घुस रहा है तो ऐसा क्यों इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों के हाथ में फोन मत दो इसलिए हमने ये मुहिम चलाई है कि बच्चों के हाथ में अब मोबाइल नहीं हम मुकद्दर देंगे
0: The initiative to popularize Mukhtar is funded by Rana and his friends.
1: घर के अंदर अगर जो मुकद्दर है किसी टाइम भी आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक मुकद्दर की एक्सरसाइज कर दोगे तो आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी रही जिम की बात जिम खराब चीज नहीं है हम ऐसे नहीं कहते कि जिम खराब है नहीं लेकिन जिम के अंदर भी कोशिश करें कि देसी एक्सरसाइज जरूर जोड़ें और मुकद्दर तो जरूर जोड़ें जिम के अंदर भी
0: Rana explains easy availability of Mukhtar means it can be used at homes by women as well.
2: मैं अपने बच्चों को यहाँ शाम को 5 से 7 बजे तक 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए यहाँ लाते हैं और उससे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और मोबाइल जो ये 6-6 घंटे 4-4 घंटे स्कूल से आने के बाद देखते थे वो ना के बराबर हो चुका है
3: हमने दिल्ली देहात के सरकारी स्कूलों में भी ये मुहिम और वहाँ से बहुत अच्छी मुहिम चल रही है बच्चे जागरूक हो रहे हैं
4: स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज है जिससे शरीर मजबूत होता है दिमाग शांत होता है बच्चा अपनी सेहत की तरफ ध्यान देता है अच्छा खाना खाता है और आजकल तो स्पोर्ट्स में कैरियर भी बच्चों का बन रहा है तो इससे अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा बचपन से ही अगर जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे तो अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा
0: करंटली अराउंड 150 चिल्ड्रन ट्रेन अंडर रानास गाइडेंस विद सुशांत मेहरा ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे
5: Okay, you should try the Mukhtar every morning. Swing it around like this 10 times, one way, 10 times the other. Trust me, and I'm trying it at the moment. It'll make you fit. Think about it. Traditional Indian Mukhtar, a mace of sorts. On that happy note, let me say good night, goodbye. Our thoughts, I can tell you, are with the people of Kerala and of Assam and several parts of the country where there are floods. Thank you so much for joining me. Do say a prayer for the people of those states. Good night, goodbye. Jai Hind, Shubh Ratri, Jai Hind, Namaskar.
6: Some mysteries lie beneath the ocean. Others, beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
7: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.

0: Welcome back to our other special report. After the Jantar Mantar agitation over paper leaks and exam reforms, hundreds of students have now hit the streets in Ranchi in Jharkhand, alleging corruption in recruitment exams, demanding sweeping reforms. The protest has now taken a political turn, with the BJP targeting the Hemant Soren government, the Congress and the Cockroach Janata Party, extending support to the agitators. Take a look at how Jharkhand's youth are now protesting. Get Real India.
1: Delhi's student uprising has found its echo in Ranchi. After Jantar Mantar, the battle over jobs, paper leaks and recruitment has now reached Jharkhand. Jaipal Singh Munda Stadium has turned into the epicenter of a growing youth movement. Tricolors flutter and students have launched an indefinite satyagraha, alleging deep-rooted corruption in Jharkhand's recruitment system. The students are protesting over alleged paper leaks in State Public Service Commission and Staff Selection Commission exams. Evaluation errors and OMR discrepancies. Years of delayed recruitment examinations. Irregularities in the recruitment process. Repeated exam delays. And rising unemployment.
2: Maniye Mukhyamantri ji, aap Jharkhand ke naujawanon ko naukri bechna band kijiye. और जितने भी आपके कार्यकाल में परीक्षाएं हुए हैं जेपीएससी और जेएसएससी में, वो सबका सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच कराइए, ताकि झारखंड के नौजवानों को न्याय मिल सके।
3: सरकार जब तक हमारी जो मुद्दे हैं, जो मांग है, जब तक वो मानती नहीं है, तब तक हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे।
4: पूरी तरह से जेएसएससी जेपीएससी और सारे झारखंड के एग्जाम में रिफॉर्म चाहते हैं, बिना गड़बड़ी के एकदम निष्पक्ष एग्जाम हो, यही चाहते हैं।
5: कोई भी सरकार को जगाना है तो नींद नहीं आती हम लोग।
1: द फेस ऑफ द मूवमेंट इज देवेंद्रनाथ महतो, मिररिंग सोनम वांगचुक्स हंगर स्ट्राइक ड्यूरिंग द जंतर मंतर एजिटेशन. Mato has now begun an indefinite fast, vowing to continue until the students' demands are heard.
6: अच्छा, कुछ अरेस्ट भी हुए, फ्रेश अरेस्ट, वो सब जो कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं? आज भी कुछ अरेस्ट नहीं हुआ?
7: ये सब लिपापोती है,
6: लिपापोती
7: ऐसा बहुत बार हुआ है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होता है, इस्तीफा देते हैं, लेकिन अचानक एडमिट कार्ड जारी करके एग्जाम ले लिया जाता है और सीट को बेचने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे।
1: Their demands are clear. CBI and ED probe into recruitment scams. Cancel tainted exams and results. Fresh, fair and transparent examinations. Time-bound recruitment calendar. Action against paper leak culprits. Leak-proof exam and recruitment system. Transparent JPSC and JSSC recruitment. The parallels with Delhi are impossible to miss. Protesters say the Jantar Mantar movement inspired them to launch this fight. They claim the Hemant Soren government has yet to engage with them. The agitation has now acquired a political edge. Cockroach Janata Party founder Abhijit Deepke spoke to the protesters and extended support to their movement.
8: आप लोग students झारखंड में protest कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ हैं. हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है।
1: The BJP meanwhile has stepped up its attack.
9: हमारा ये मानना है कि अविलंब सीबीआई जांच करा करके जेपीएससी जेएसएससी के तमाम मामलों पर जो छात्रों का मुख्य डिमांड है उसको पूरा किया जाए, और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया इन लोगों ने एक नैतिक जिम्मेवारी तय करते हुए, वैसे ही इन सारी गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेवारी करते हुए हेमंत सोरेन जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
1: The spark that ignited Jantar Mantar has now reached Ranchi. And with the movement gathering momentum and politics escalating, the pressure on the Hemant Soren government is only mounting. With Satyajit Kumar, Bureau Report, India Today.
0: And we'll keep tracking that story from Jharkhand. Let's turn to some good news today as we end the show. It's a traditional fitness tool, especially across North India, that's making a comeback. Former wrestler Hawa Singh Rana has launched a campaign to take the age-old Mugdar into every home, distributing over 4,000 of them free to children. His mission is simple: get youngsters off their mobile screens and get them fit and well. Take a look at the latest fitness trick, the Mugdar. Take a look.

0: Mukhtar, a traditional fitness club, is getting a new lease of life. Thanks to Hava Singh Rana. The former wrestler Khera Kala in Delhi has launched what he calls Har Ghar Mukhtar, Ghar Ghar Mukhtar campaign to popularize its use. Rana has distributed over 4,000 mukhtars free to children.
1: दो साल के एक साल का भी बच्चा है वो भी फोन के अंदर घुस रहा है तो ऐसा क्यों इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों के हाथ में फोन मत दो इसलिए हमने ये मुहिम चलाई है कि बच्चों के हाथ में अब मोबाइल नहीं हम मुकद्दर देंगे
0: The initiative to popularize मुकद्दर is funded by Rana and his friends.
1: घर के अंदर अगर जो मुकद्दर है किसी टाइम भी आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक मुकद्दर की एक्सरसाइज कर दोगे तो आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी रही जिम की बात जिम खराब चीज नहीं है हम ऐसे नहीं कहते कि जिम खराब है नहीं लेकिन जिम के अंदर भी कोशिश करें कि देसी एक्सरसाइज जरूर जोड़ें और मुकद्दर तो जरूर जोड़ें जिम के अंदर भी
0: Rana explains easy availability of mukhtar means it can be used at homes by women as well.
2: मैं अपने बच्चों को यहाँ शाम को 5 से 7 बजे तक 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए यहाँ लाते हैं और उससे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और मोबाइल जो ये 6-6 घंटे 4-4 घंटे स्कूल से आने के बाद देखते थे वो ना के बराबर हो चुका है
3: हमने दिल्ली देहात के सरकारी स्कूलों में भी ये मुहिम और वहाँ से बहुत अच्छी मुहिम चल रही है बच्चे जागरूक हो रहे हैं
4: स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज है जिससे शरीर मजबूत होता है दिमाग शांत होता है बच्चा अपनी सेहत की तरफ ध्यान देता है अच्छा खाना खाता है और आजकल तो स्पोर्ट्स में कैरियर भी बच्चों का बन रहा है तो इससे अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा बचपन से अगर जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे तो अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा
0: करंटली अराउंड 150 चिल्ड्रन ट्रेन अंडर राणा'स गाइडेंस विद सुशांत मेहरा ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे
5: Okay, you should try the mukhtar every morning. Swing it around like this 10 times one way, 10 times the other. Trust me, and I'm trying it at the moment. It'll make you fit. Think about it. Traditional Indian mukhtar, a mace of sorts. On that happy note, let me say good night, goodbye. Our thoughts, I can tell you, are with the people of Kerala and of Assam and several parts of the country where there are floods. Thank you so much for joining me. Do say a prayer for the people of those states. Good night, goodbye. Jai Hind, Shubh Ratri, Jai Hind, Namaskar.
6: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
7: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
6: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere.